0: one? Come to seeknet.com/stories.
1: Sikhi di e nishani. Shabad Guru Ram Das ji. Vyakhya Jagdeep Singh. Chitrakar Pardeep Singh.
2: Simar Singh, Kirpa Kaur, utho utho. Ki tuhanu vadiya neend aayi?
3: Akhirli cheez jehdi mainu yaad hai, mummy ji ne karo binanti gona shuru hi kitta si te mainu neend aa gayi.
4: Ajit Vir ji, mainu bada changa lagda hai jadon tusi mainu jagande ho.
2: Aao vekhiye pehla kaun ishnan karke paath karan layi tyar hunda hai.
3: Main jit javanga.
4: Mummy ji, ki main bubble bath le sakdi haan?
2: Aao pehla simran kariye, phir kripa kaur tussi aaj japji sahib karo. Main jap sahib karanga. Simar Singh tuhe prasad swaiye karenge.
3: Mainu bahut bhukh lagi hai. Aao chheti chheti paath kariye taki main nashta kar saka.
4: Ki main ardas bhi kar sakdi haan?
2: आओ अनंत साहिब करिए.
3: मैं उच्ची उच्ची गावांगा.
4: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया.
2: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है. मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है.
3: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन.
5: मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकता हाँ.
4: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीर हन.
2: ओ वेको गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन. आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए.
3: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन.
4: ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੀ.
2: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
3: ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ.
4: ਮੈਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ.

0: ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.